तो संस्कारें मिल के पड़िए और जतन करिए, जो गुरु ने सानु पूर्ण पाके दसे हैं किड़ा प्यार किया गुरु ने साढ़े नाल, असी भी जतन करिए उन्हों प्यार करने उच्चारण करो श्री वाह। भाई शाह भाई गुरदास जी ने गुरसिख का गुरसिख नाल कितना प्यार

ना ही वापस बुलाया, ना कोई चिट्ठी पाई। मन तड़फद अगे ता एक मिनट भी पिता गुरु तू दूर नहीं सन रहंदे, पर हुण ता किन्ने दिन बीत गए ने, कोठे ते खलोते ने, ओ राह पे तकदे ने।

कोई सुनिया भेजा कोई चिट्ठी पावा पिता जी मैनू बुला लो पर ए ता हुक्म दी उलंघना होवेगी।

नाम खसम का चित न किया कपटी कपट कमाना। जे तू किसे न दे मेरे सहबा क्या को कड्डे गणा नानक बिनवे सो किछ पाइए पुरब।

பிள்ளையான குரு பிரபு புடனவையான நாம இன்னும் இருக்கு. சஜாவுக்கு சுட்டி சுத்தி பார்க்க சொல்லுகா கேர் லகா புக்கா தும் நவமி தேவி நவமி तो गुरु का हुक्म ही मने आए तेरी को क्योंकि हुक्म हुक्म दे मालिक की बख्शिश नाल जेड़ा हुक्म देना वो रहमत भी ना तो हुक्म नहीं मनिया तो मैं जरूर मनना ये अपने आप रह जाएगा तो गुरु जान के तेरी सेवा ते जे भजे नसेगा ना तो सामने कोठी विच बंद भी कर रहे हैं मैं गुरु का हुक्म मनना भाई सिद्धिया उठ गया तुरन लगा मैनू कौन है बंद करने वाला बुद्धू शाह ने मुरीदा ने इशारा किया इन्होंने पकड़ के भाई सज्जे को कोठी बंद कर बुद्धू शाह ने मेरा बाल बच्चा भुख नाल मर जाए बुद्धू शाह ने कहा नहीं जिन्हें हुक्म दिता है वो आपे रक्षा करेगा ये तेरे मन की कमजोरी की रक्षा करेगी बुद्धू शाह एवे तो गन्ना बुद्धू शाह जी उसको गन्ना सिख धर्म बिगाड़ बच आके मुश्किल नाल उठाया उसने और मुंह च पानी पाके कहता सतगुर ए की कीता मैनु उधर कैद पता चे मेरा बाल बच्चा सब उनके मर्जी कौन खिलाती जाए कोठी बंद एक दिन बीतिया कुछ नहीं खादा थी दूसरा दिन होया बुद्धू शाह ने किया सजे प्रसाद तक नहीं मैनू भुख नहीं तीजा दिन होया सोचने लगा मैंने बाल बच्चे तो भुख नाल मर गए होंगे तू भुखा क्यों मर गए अगर सही रहे भुख बड़ी राज है भुख बड़ी पर्वन है फरीद ने कहा मौतों भुख मिली इंसान से कई बड़ी बड़िया बड़िया गलतियां कर मारे की लिखा है दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख सब कुआर जमदूत एक दुख रोग लगे तन खाए व्याज न होने का सात मारी सकल लग गया नौ महीने भी समा नौ बीत जन समय ना पता ही नहीं ना ਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਸਕਿੰਟ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੁੱਗ ਅੱਖੀਂ ਘੇਰੇ ਮਾਟ ਕੇ ਪਲ ਪਲ ਵੀ ਵਿਹਾਏ ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਯੂ ਬੀਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਮਨ ਜੰਜਾਲ ਨਾ ਛੋੜੀ जब दिया जब हम दिन दे पैर पैर के कड़िया हजूर कह आव घटे पर नहीं नौवे लै भाई सज्जा तेरे पौ पद मुकले हैं अज नौ महीने बीत गए हैं तू जा सकते भाई सज्जा तू जाओ किधर जाओ बाल बच्चा तो पुखना मर गया हूं कोई आसरा नहीं ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਓ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਚ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਮਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰੂ नौ महीने की कैद दे मैं नहीं जाना सैयद बुद्धू शाह ने कहा तो भाई सज्जा ये भी कोई राज है तू नहीं समझ मच्छी की जाने साधन के डा बैठा
ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਰੇ ਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਖੀ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ

हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख, तू सारिया ते मेर कर, सारी सृष्टि ते मेर कर। तू मालक है, तू प्रतिपालक है, तू राखा है सबे जी समा, तू सारिया ते मेर कर। तू ईरखा द्वेष वैर विरोध जो मना च अग लगी हुई है दूर कर, सारे अनु समत बख्श। जगत सड़ रहे है, अगा लगिया हुई ने, तू कृपा कर। तू मालक है सारिया ते कृपा कर। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित दुआरे उभरे जिते लेहो ओबा। तू सारिया ते मेर कर, सारे तेरे ने, तू सारिया की कृपा कर। ये अरदास है कि अन्न पानी मुच उपाए, ये पदार्थ सारिया नू दे,

शिमरस्त वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशी नाम तो बिना मनुख सखना है इसलिए महाराज ने नाम अमृत सानू बख्शन लई सब तो पहला पंज बाणियां दा अमृत खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके साडे मुख विच पाया अमृत ते आख्या ऐ गुरु के सिख हुण जदों तू गुरु के शब्द दी कमाई करेगा ना तेरा मन निर्मल हो जाएगा जितनी कोई मुशक्कत कालेगा आप ही नहीं सारा कुटुंब ही तार के दरगाह नू लै जाएगा इसलिए महाराज बख्शिश कर रहे हैं भाई अमृत पियो ये बचन अपने पले बनांगे

ताती भावना लग गई, पार ब्रह्म शरण आई। नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुस प्रोटेक्शन। ऑन ऑल फोर साइड्स इज माय लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर। ही हैज गिफ्टेड मी विद द बाम ऑफ लॉर्ड्स नेम एंड आई हैव एनश्राइंड लव फॉर हिम विद इन माई सेल्फ। The Preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under His wings and has become my protector.

संसार दा आना जाना तो बड़े है, पर इस आउण तो बाद जान दे समय नवेड़ा सच ते होना है। सदा रहने वाले वाहिगुरु अकाल पुरख असी रोज पढ़ने, कूड़ राजा, कूड़ परजा, कूड़ सब संसार, क्योंकि रहना जो नहीं, जेड़ा आज है कल नहीं होगा, जो आज तो 100-200 वरे पहला सी ओदे बारे

कि कहो जिहा लड़का होना चाहिए जिदे बारे मैं गुरु साहिबां नूं दसा तां इन्ने नूं भाई जेठा जी गुरु रामदास पातशाह सिर ते टोकरा चुके है सेवा कर रहे ने सब नूं निकले ने तां माता जी दा ध्यान भाई जेठा जी वल गया सोहणे नैण नक्श सोहणा कद काठ अखां विच नाम दी खुमारी भाई जेठा जी नूं देखिया तां माता जी देखदे रह गए। गुरु अमरदास पातशाह ने फिर पुछया भाई तुसां दस्या नहीं कहो जिहा वर चाहीदा है अपनी बीबी वास्ते ता माता जी कहन लगे पातशाह ओ जिहड़ा लड़का सामने टोकरी चुके जा रहा है लड़का होवे ता एहो जिहा होवे कैडे सोहणे नैण नक्श ने इहदा चेहरा देखदिया मन प्रसन्न हुंदा है ता गुरु अमरदास पातशाह हस पए कहन लगे भाई एहो जिहा वर चाहीदा है। माता जी कहन लगे हां पातशाह साहब जी कहन लगे फिर एदे वर्गा तां इहो ही है एदे वर्गा होर कोई नहीं हो सकता। गुरु साहिबां ने भाई जेठा नूं कोल बुलाया पुछया काका तेरा नाम की कित्थों दा रहण वाला है ता भाई जेठा जी ने हाथ जोड़े चरना ते मथा टेकिया ते कहा पातशाह नाम जेठा है लाहौर दा रहण वाला। साहब जी कहन लगे चंगा फिर अज तू तू साडा हो गए अपनी सपुत्री बीबी भानी दा व्याह भाई जेठा जी नाल कर।

जी हो गए ने ते सेवा करन लग पए, दिन रात सेवा कर दे ने। एक दिन गुरु अमरदास पातशाह जी इशनान कर रहे सन, अते माता पानी जी इशनान करा रहे सन, चौंकी दा पावा टुट गया।

चौंकी दा पावा टूट गया ते मैं अपना पैर थले दे दिता कि मता आप जी दा ध्यान ना भंग हो जाए ते मेरे पैर दे विचों ए खून निकल रहा है जिद नाल पानी दा रंग लाल हो गया। तो गुरु साहब जी बड़े प्रसन्न हुए, कहन लगे बेटा पानी मंग तेन की चाहिए। क्या पिता जी आप दा दिता बहुत कुछ है, उस अकाल पुरख दा दिता बहुत कुछ है, किसी चीज की इच्छा नहीं। महापुरुषां दे तीन वचन हुंदे ने। तीसरी वारी क्या बेटा कुछ मंगो बड़े

कि ये घर की गद्दी घर विच रवे। तां गुरु साहिबां ने कहा ये चीज मिलता जाएगी पर ये वास्ते देना बहुत कुछ पवेगा, सारा सरबंस वारना पवेगा। अगर मंजूर है तां ये जोत ये गुरगद्दी घर विच रह सकती। क्या पिता जी जो मर्जी हो जाए मैं सब कुछ कुर्बान कर देंगे, पर सा संग की सेवा ये साडे परिवार दे कोल रवे। तां उस वक्त गुरु साहिबां ने कहा कि बेटा देख लो तत्तियां लोहां ते बहना पएगा, सिरां ते गर्म रेते पवाने पैणगे, किधरे सिर भी कटाना पएगा, किधरे बच्चे नीहां विच चनवाने पैणगे, किधरे उन्हां दियां छातियां गोलियां तीरां दे नाल छलनी करवानी।

जे तुहाडा हर मंदिर आजाद नहीं, तुहाडा ये घर आजाद नहीं, ते तुहाडे जीण दा भी कोई लाभ नहीं। ओ सिख नहीं जिन्हों ये पता लगे कि साडा हर मंदिर कैद है, असी हर मंदिर दे दर्शन नहीं कर सकते, ते ओ सिख चुप बैठा रवे, ओ सिख अकवान दे लायक नहीं हैगा। अज प्रण करो कि असी हरिमंदर साहब नूं आजाद करके रहना है। एक लेख मारी जकारा छड़िया, सारिया सिखां ने लीक टप्पी, ते बाबा दीप सिंह अपने जवानां दे नाल तुरे ने अमृतसर दे लागे। बड़ा भयानक युद्ध होया, एक पासे हजारां मुगल फौज, एक पासे गिनती दे सिख, पर सिखां नूं जान प्यारी नहीं, अपना हर मंदिर प्यारा है। अपनियां जाना वारियां अते बाबा दीप सिंह दा जदों सिर तों सिर धड़ नालों अलग हो गया, अपना सिर हथ ते चुक के खंडा बांधिया होया दुश्मनां दा नाश कीता, ते अपने हर मंदिर नूं आजाद कराया। क्यों कि बाबा दीप सिंह जी जानदे ने इह गुरु रामदास दी नगरी, गुरु रामदास ने वसाई है, ते जेड़ा भी इस नगरी ते हमला करेगा ओदा नाश हो जाएगा, ओदी कुल दा नाश हो जाएगा। भावे ओ कुछ चिर तां खुश रहिंदा है कि मैं कब्जा कर लिया, मैं हर मंदिर नूं बर्बाद कर दिता, मेरा कोई की बिगाड़ सकदा है, पर इह तां गुरु दी नगरी है जिथे गुरु रामदास वसदा है, अकाल पुरख वसदा है, जेड़ा इनू बर्बाद करेगा।

कर प्रसाद गुरुदेव अस्पदी जय प्रसाद छती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंधित तन लावे तिसको सिमरत प्रमगत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर जय प्रसाद गिरे संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याये त्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे तिसे त्याग कत अवर लुपावे जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जय प्रसाद तुझ सबको माने मुखता को जस रसन बखाने जय प्रसाद तिरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जब दर गए मन पावे नानक पत से ती कर जावे जय प्रसाद अरोग कंचन देही लिवलावो तिस राम स्नेही जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र टाके मन सन्नी पर ठाकुर प्रभु ताके जय प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद आपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद असव हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न विसारी जय प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई तिसे त्याए जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख जय प्रसाद करे पुन बोधान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास जितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जय प्रसाद सुने कर्ण नाद जय प्रसाद पेखे विस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले जय प्रसाद परमगत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभु त्याग वर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूल तू ताको जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सिवराच जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व निधान प्रभु तेरी मैया आपको कछु न किन्हु मिलया जित जित लावो।